चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

पाई। गुर का शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटह वारिया सद ही तेरे नाम विटह बल जाई। रहा हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई। शब्द ही मुकत पाई शब्द मन तन निर्मल होआ। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता। हर स्यों रहया समाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा। हर रसना पाया बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने। मानमुख मुगद गुबारा आपे कर वेख मार्ग लाए पाई। तिस बिना अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै पाई। करता करे सो होई नानक नाम बसिया मन अंतर पाई। अवर ना दूजा कोई आपे कर वेख मार्ग लाए पाई। तिस बिना अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै पाई। करता करे सो होई नानक नाम वसिया मन अंतर पाई।

जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी बढ़ी बढ़ाया पार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक जापन करतबा, जिया अंदर जियो सबकी जान ला, सबकी तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर।

ने आसरयों के आसरा गुरु धन धन साहेब श्री गुरु रामदास साहेब जियो महाराज धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ

तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाइया। तुद वेण सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तो देहे तिस क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलियह दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड़ियाई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा न होवै घाट न जाए, ना ओह मरै न होवै सोग। देंदा रहै न चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए। ना को होवा ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसारहै ते कमजात। नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सत पुरखा, बिनाव करौ गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव, मोकौ राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जान के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सहे, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तेन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मेल जान नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कासट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संवाहे ठाकुर।

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रसे आरियात देग तेग फतेह। बिरद की पैज, पंथ की जीता, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु।

हर हर कंपै बल जियो न जनो क्या करसि पियो रैन गई मत दिन पी जाए पवर गए बग बैठे आए कच्चे करवे रहे न पानी हंस चलिया काया कमलानी कार कन्या जैसे करत सिगारा क्यों रलिया मन भाज पतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर एह कथा सिरानी गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनहो कसुद अकालिया बाहर चिट्टविया रीसा करह तिनाड़िया जो से वह दर खड़िया नाल खसम रतिया माड़ सुख रलिया होंदे तान नताड़िया रहे मनड़िया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जियो चेर पयो दर्शन देखे लिख कत है न छूटिए खिनो खिन भूलन हार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर अर सौ कुरसों चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे

गोरपुरा पेट ओवड पागी मन पया पर गासा कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा गोरपुरा पेट ओवड पागी मन भया पर गासा कोई ना पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा

अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपाओ पाए गोर चरणी लागे एक राम नाम आधारा

कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा वड़ी वड़ियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुकह टल गुर सेवी, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन

ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਰਹਾਉ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨਿਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ, ਗਉ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਗਉ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਹੈ, ਭੈ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
जय कर कीरत आखिय करते का होए विचारो तेत कर गाव हो सोहेला सिवर हो सिरजनहारो तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहेला होम बारी जित सोहेलै सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार सांबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल देहो सज्जन आसीसड़िया जां होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ बेसोए चसया घड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलांत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन बड़ा हे कर डंडौत पुन बड़ा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर होमे कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औद घटे दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे बहर न होए गो फेरा।

सुख मांगे मोक कर संतन की तूर। अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूर। नानक दास इह सुख मांगे मोक कर संतन की तूर।

मन तन भय अरोगा कोट विघ्न लाथे प्रभु सरना प्रगटे भले संजोगा। उठ इशनान करो पर

0: सतनाम करता पुरख निरपौ निरवै अकाल मूर्त अजुनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक पी महले पहले के लिखे कुंडे आसरा जे की तुनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होदे गुर बिन पुर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे आ कहु नानक सोना फलिया है बपड़े पीतल

ते नचे मंगते गिड़मड़ पूरा ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पता लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जित तन पाई है नानका सेतन हो वैशा ज्ञान नगली ढूंढिए कथना करड़ा सार करम मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नदर करीजे अपनी का नदरी सतगुर पाया जो बोते जन भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जे वरदाता को नहीं।

लोहा मंडा दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडहा अंड जजेर जूत पूजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै समाले सबना।

0: पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन टिका क्या तग महला पहला।
1: लख लेखिया चंगियाईयां लख पुन्ना परवान, लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखया अमन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी सान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू।

पहला कूड़, राजा कूड़, प्रजा कूड़, सब संसार कूड़, मंडप कूड़, माड़ी कूड़, बैसनहार कूड़, सोयना कूड़, रूपा कूड़, पहनन हार कूड़, काया कूड़, कपड़ कूड़, रूप पार कूड़, मियाँ कूड़, बीबी।

0: नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहेब सिवत सवाले हो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहे महला दूजा
1: जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सुर शब्द सुदर शब्द प्राकृत सर्व शब्द में एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास

गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़ा होए गुणगा तायो मी साध न मारिए जे कल कल ना तेवे हो ना उपचारिए सिकरन खेड़िए जित दर गए दया हारिए पड़िया ते ओमिया विचारे अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए।

हर नाम सत पायो गुर अमर परगास सुर नर सप्त समुंदर के तारो तेरे पवन जास।

0: सच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भनियो। लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए।
1: जाम गुरु होए वल तने क्या गौरव दीजा। जाम गुरु होए वल लख बहे क्या कीजा। जाम गुरु होए वल ज्ञान र त्यान अनन पर। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु अहनस जपा दास पाठ बेनत कह। जो गुरु नाम रिद महत

परस सहज सो भए दर्शन परस ऐ गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसमदी नूर अर सहो कुरसो चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे साहो सजन सचा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाज अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने वेदन सत गुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई जो मंग है सो ले रहे प्रभ अपनिया संतां दे रहे हर गोविंद प्रभ राखिया जान नानक साच सुपाखिया जो मंग है सो ले रहे प्रभ अपनिया संता दे रहे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुपाखिया
ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ।

लीलातम द्वैतोति वस्तुत पातम ये जान ब्रह्मं कर्मं सब भोग ने चो कर्म बहु नानक ने चो धावे बिन सतगुरु वाट न पावे कपड़ू।

0: सपूत सपूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी। तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना किवे तगा आपे वते वड़ तागे अवरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसेरा हो। सुन वेखो लोकाए होवेडा मन अंधा ना सजा।

0: जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क ते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई सार कुड़ी रास कुड़ा वापाड़ कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा परपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा पकड़ा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आइए सुच हो वे ता सच पाये पड़ी चते।

सब को वेख नदरी हेठ चलाए दा आपे दिवड़िया आपे ही कर्म कराए दा वडहो वडा वडनी दनी सर सर कंधे लाए दा नदरो पट्ठी जे करे सुलताना काहो कराए दा दर मंगन भिख न पाए दा दर मंगन।